स्वरूपे प्रभंगी परमाथे समस्ती में बुद्धे कलंकं बिना निकलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जो जुगेश्वरं परम सिद्धे नमो राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रपाणे नमो परम ज्ञान।

अनाद हैं, जुगाड़ हैं, अजय हैं, अभय हैं, अभूत हैं, दूत हैं, नाश हैं, उदास हैं, तंद हैं, मंद हैं, भगत हैं, बेरक्त हैं,

जाय। तीर्थ नावां जेते सुपहावा विण पाणे के नाय करी जेती सरठ उपाई वेखा विण नाव कर्मा के मिलै लई मत विच रतन जुवा।

अचरजे को सुनो रे पंडिया, अब कुछ कहना जाई। सोर नार गान गंधराब जिन मोहे, तेरे पियो तेरी पवन मखे अली लाई। राजा राम अनहद किंगरी वाजे, जाकी दृष्ट नाद लिव लागे। रहो पाठी गगन संगिया अर चंगिया, कनक कल सेक पाया। तिसमें तार चोए अत निर्मल, रस में रस

दुख बन को मत परम लागा, चेत राम नाहीं जाम पर जाम पर जाएगा, जन बिचरे अनरादा, रहाओ बाल बनोद

तापस संयम छोड़ सो किरत मत राम नाम ना आराध्या। उछलिया काम काल मत लागी तो आन साकत गल वंदिया। तरन तेज पर तिरिया मुख जो है सारे अपसर ना पछाणिया। उन मत काम महाबिक फुले उन मत काम महाबिक फुले पाप पुन ना पछाणिया। सोत समत देखे मन गर्भिया राम हृदय ते खोया। अबर मर्त माया मन तोले तो पग मुख जन्म बगोया। मुंडर केस कुसम ते तोले सपत पताल की बाणी। लोचन सर में

तीसरा सियाया जिन भेद लिया, ज्योति जोत मिली सुख पाया, जन नानक एक पसारिया जियो। माझ महला चौथा जित कर पीर सुहाग बनाया, तित कर सखिए मंगल गाया, आनंद बनोद ते कर सोहे, जो तन कंत

सगल संतन पे वस्ते एक मांगो करूं बनंती मान त्यागो बार बार जाई लख बरिया दियो संतन की तूड़ा जियो तुम दाते तुम पुरख बदाते तुम समर्थ सदा सुख दाते सबको तुम ही ते बरसावे अवसर करो हमारा पूरा जियो दर्शन तेरे पवन पनीता आत्म गढ़ बिखमक्त ने अति नाही जीता तुम दाते तुम पुरख बदाते।

अवर साध चख सगले देखे, मन हर रस सब ते मिठा जियो, जो जो पीवे सो तृप्तावे, अमर होवे जो नाम रस पावे, नाम नदान तिसे प्राप्त, जिस शब्द गुर मन बुठा जियो, जिन हर रस पाया सो तृप्ते अगाना, जिन हर साध पाया सोना इंडलाना, तिसे प्राप्त हर हर नामा, जिस मास्तक पगीठा जियो, हर एक सहत आया बरसाने बथेरे, जिस लग तिस लग मुक्त पे कनेरे, नाम नदाना गुरमख पाइए, कहो नानक बिरली डिठा जियो, माज महला पंजवा निद सिद रिद हर हर में, निद सिद रिद हर हर मेरे, जन्म पदार्थ गैर गंभीरे, लाख कोट खुशियाँ रंग रावे, जो गुर लागा पाई जियो, दर्शन देखत पे

पोत सेवक संग रता, प्रभ प्रीत पाले सेवक सुख दाता, पानी पखा पिसू सेवके, ठाकर ही का आहार जियो, काट सेलक प्रभ सेवा लाया, हुक्म साहिब का

करके सेवक हर रंग माने। जो किच ठाकर का सो सेवका, सेवक ठाकर ही संग जहार जियो। अपने ठाकर जो पहराया, बोर्ड ना लिखा पूछ बुलाया। तीस सेव के नाने करवानी, जो गहर गंभीरा गहोर जियो। माज महला पंजवा, सब कुछ कर में बाहर नाहीं। बाहर टोले सो परम पलाई, गुर प्रसादी जिनी अंतर पाया, सो अंतर वार सहेला जियो। चिम चिम वसे अमृत तारा, मन पीवे

तरंग ज्यों जले समाया, ज्यों ज्योति संग ज्योत मलाया, को नानक परम कटे कवाड़ा, बहु ना होइए।

दया तारी तिन सिर जन हारे, जी जंत सगले प्रत पारे। मेहरबान करपाल दियाला सगले त्रिपति अगाए जियो, बांतिंत्री पवन की तोन हरिया, कारण हार खिन पीतर करया। गुरमुख नानक तिसे अरादे।

मंगल कल्याण न दाना, सुख सहज हर नाम बखाना। होए करपाल स्वामी अपना, नाव नानक कर में।

गुण गापत मन हरिया होवे, कथा सुनत मल सगली खोवे, पेटत संग साध संतन के, सदा जपो दियाला जियो, प्रभ अपना सास सास समारो। ए